0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी राम जी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
4: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
5: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
6: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
5: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
7: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
8: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। विकसित भारत जी राम जी स्कीम कम्स इनटू फोर्स अक्रॉस द कंट्री टुडे, रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एमजी नरेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स टू इरानियन प्रेसिडेंट, स्ट्रेस्ड need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a three-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football, and India's men's cricket team to begin their five-match 2020 international series against hosts England today. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 विल कम इनटू फोर्स अक्रॉस रूरल इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेज दैट द एक्ट विच गारंटीज 125 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर विल एम्पावर रूरल इंडिया। Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country.
1: The VBG Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households. The Act places strong emphasis on timely, transparent, and accountable wage payments. The new Act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat Ji Ramji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
9: The central government has notified revised wage rates under the Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. It said, for the first time, an interim-based wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under MG Narega to 327.4 rupees per day under Viksit Bharat Ji Ram Ji, marking an average increase of over 10%. 21 states and administrative units, which previously had wages below 300 rupees, have now been brought up to the new benchmark. The states of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh and Himachal Pradesh are among those witnessing significant hikes ranging from between 15 and 25%. The ministry highlighted that Arunachal Pradesh and Nagaland have received the highest percentage increase of nearly 24.5%. States with already higher wages have also seen upward revisions. Haryana will now have a wage rate of 409 rupees, Goa 406 rupees and Kerala 401 rupees per day. In Sikkim's high altitude Gram Panchayats, the rate has been set at 450 rupees per day. Union Minister for Rural Development, Shivraj Singh Chauhan, described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. The Uttarakhand Minority Education Authority has come into existence today, replacing the Madrasa Board in the state. With this, all 456 madrasas in Uttarakhand will now be monitored by both the state government and the central government. More from our correspondent.
5: The Uttarakhand government has taken the significant step to make the education system more modern, transparent and inclusive. State Minister for Social Welfare, Shri Khajandas, said that all recognized madrasas currently operating in the state will now come under the Uttarakhand Minority Education Authority. They will also be affiliated with the Uttarakhand Board for School Education to ensure that students receive education in line with the national education standards. He said that the new system will not only be limited to institutes of the Muslim community alone, but will also apply equally to the educational institutions institute run by Sikh, Jain, Buddhist, Christians and Parsi minority communities. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
9: The house-to-house data verification phase of the census begins across Kerala today as part of the nationwide census exercise. More from our correspondent.
10: The field verification follows the completion of the self-enumeration process, which ended at midnight yesterday. During the self-enumeration phase, households were able to digitally submit details of family members through the census portal. Residents who completed the online registration are required to provide the self-enumeration identification number to the census enumerator during the household visit. The enumerator will verify whether the information submitted online matches the existing record. If any mistakes are found or if a household has not completed self-enumeration, the enumerator will collect the required information afresh during the visit. Midhi M. Palluruthi, Akashwani News, Thiruvananthapuram.
9: President Draupadi Murmu will grace the first convocation of the Central University of Andhra Pradesh in Jantaluru in Ananthapuramu district today. The president will confer degrees on 1,268 students who have successfully completed undergraduate and postgraduate programs. She will also present

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू होंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। फिल्म और रंगमंच की लोकप्रिय हस्ती विजया मेहता का 92 वर्ष की आयु में कल रात मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी प्रतिभाओं में से एक थी। एक रिपोर्ट।
1: विजया मेहता ने रंगायन नाट्य समूह के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई नाट्य भाषा, नई दृष्टि और वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उनके चर्चित नाटकों में बैरिस्टर, सखाराम बाइंडर, हयवदन और वाडा चिरेबंदी शामिल है। रंगमंच के अलावा उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन कृतियों में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। विजया मेहता को वर्ष 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1986 में फिल्म राव साहेब के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को दर्शाता है। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रुपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। तीसरा 7 जुलाई, चौथा 9 जुलाई तथा पांचवां और अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। As the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 came into force today, Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan termed the occasion a historic milestone. In a social media post, Mr. Chauhan said, "The Act marks a new chapter in ensuring dignity, self-respect and secure livelihoods for millions of rural workers." He said the Act provides rural families with a statutory right to 125 days of employment. Expressing confidence in the initiative, Mr. Chauhan said it will create new livelihood opportunities in villages, accelerate the creation of sustainable assets, empower women and give fresh momentum to the vision of a self-reliant rural India. Oil marketing companies have reduced the price of a 19-kilogram commercial LPG cylinder by 183.50 rupees today. According to Indian Oil Corporation Limited, the new prices for commercial LPG cylinders have come into effect from today. After the reduction, new rate for 19-kilogram commercial LPG cylinder price in Delhi has been slashed to 2,930 rupees. This decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business. Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, will arrive in New Delhi this evening on a three-day visit to India. This will be the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. National Doctors' Day is being celebrated today across the country to honour doctors for their dedication, compassion and invaluable contribution to protecting and improving public health. The theme for this year is Behind the Mask, Who Heals the Healers, which highlights the importance of supporting the mental, emotional and physical well-being of doctors who dedicate their lives to caring for others. Prime Minister Narendra Modi extended greetings to the doctors of the country by saying that their hard work, compassion and commitment form the backbone of India's healthcare system. 78th National Chartered Accountants CA Day is being celebrated today across the country. The day marks the establishment of the Institute of Chartered Accountants of India in 1949 and honours the vital role chartered accountants play in financial transparency, corporate governance and economic growth. Vice President C.P. Radhakrishnan will participate in the 78th CA Day celebrations as chief guest at Vigyan Bhavan in New Delhi. Seven people were killed and more than 12 got injured after a sleeper bus caught fire following a collision with a truck on the Delhi-Mumbai Expressway in Rajasthan's Dausa district. The accident occurred at around 3 a.m. near Tanwar village close to Bandikui. The bus, which was travelling from Rishikesh to Indore, rammed into a truck and caught fire soon after the impact. Several passengers were trapped inside the burning bus and did not get an opportunity to escape. Police have launched an investigation to determine the cause of the accident, while efforts are underway to identify the deceased. Domestic equity benchmarks traded higher this morning, tracking firm global cues. Sensex jumped over 200 points to hit an intraday high of 76,697 in early trade, while Nifty rose 70 points to 23,934. Buying was seen in media, auto consumer durables, FMCG, IT, realty and pharma stocks. Death toll in Venezuela earthquakes has risen to 1,943, while the number of injured almost doubled to 10,571. The number of official rescues have drastically dropped in the last 3 days. The Venezuelan government said 5,380 people were saved in the first 2 days after the quakes, but on Monday, the authorities found only 4 people alive. In football, Mexico defeated Ecuador 2-0 in the round of 32 clash at the Mexico City Stadium to qualify for the round of 16 of FIFA World Cup this morning. Raul Jimenez and Julian Quinones scored for Mexico. This marked Mexico's first World Cup knockout stage win in 40 years. The co-hosts will now face either England or the Democratic Republic of Congo in round of 16 at the same venue on Sunday. And that is the end of this news bulletin.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार तापमान के बढ़ने और भीषण गर्मी से कृषि खाद्य प्रणाली में खाद्यान्न उत्पादन और आय में कमी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मेक्सिको अंतिम 16 में पहुंचा, इक्वाडोर 2-0 से पराजित। फ्रांस ने भी स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में बना ली है जगह। और 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी।
4: ईरान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। भारत के साथ संबंध और सशक्त बनाने की ईरान की प्रतिबद्धता दोहराते हुए राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक विरासत और परस्पर आदर सम्मान पर आधारित हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
3: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
5: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वित्तीय सेवा, वित्तीय प्रौद्योगिकी, डिजिटल भुगतान और उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ाकर भारत और ग्रीस के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ग्रीस के आर्थिक और वित्त मंत्री किरियाकोस पियरकाकिस के साथ मुलाकात में दोनों पक्षों ने साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत और ग्रीस के संस्थानों के बीच गहरे सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल ने ग्रीस के अवसंरचना और परिवहन मंत्री क्रिस्टोस डिमास के साथ भी मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने अवसंरचना, परिवहन संपर्क, समुद्री क्षेत्र, विमानन और सतत मोबिलिटी में भारत ग्रीस के बीच बढ़ते सहयोग पर चर्चा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कल संयुक्त रूप से भीषण गर्मी और कृषि नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ता तापमान और भीषण गर्मी कृषि खाद्य प्रणालियों में खाद्यान्न उत्पादन और आय को कम कर रही है। इस प्रणाली पर 1 अरब 23 करोड़ लोग निर्भर हैं। साथ ही इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि जब गर्मी के साथ साथ सूखा जैसी अन्य आपदाएं जुड़ जाती हैं तो कृषि उपज का नुकसान 3 गुना तक बढ़ जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भीषण गर्मी कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में उभर रही है। वेनेजुएला में भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,943 हो गई है। लगभग 10,571 लोग इस त्रासदी में घायल हुए हैं। वेनेजुएला सरकार ने कहा है कि भूकंप के बाद पहले 2 दिन में 5,380 लोगों को बचाया गया, लेकिन सोमवार को अधिकारियों को केवल 4 लोग ही जीवित मिले। आपदाग्रस्त लोगों की सहायता के लिए 25,000 से अधिक दमकलकर्मी, बचावकर्मी, पुलिस अधिकारी और सैन्यकर्मी लगे हैं। दक्षिण अमरीका के वेनेजुएला में 25 जून को भूकंप के 2 तेज झटके आए थे और इन झटकों के बाद काराकास में कई इमारतें गिर गईं, जिनका असर वेनेजुएला की आबादी के एक बड़े हिस्से पर पड़ा है। अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमरीका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमरीकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ट्रंप बनाम बारबरा मामले में न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह आदेश अमरीकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। नेपाल में बर्ड फ्लू के प्रकोप के बाद कावरे पालनचोक में 40,000 से ज्यादा बत्तखों और मुर्गियों को मार दिया गया है। इस संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रसार रोकने के प्रयास तेज हो गए हैं। धुलीखेल स्थित जिला पशुधन कार्यालय ने व्यावसायिक फार्मों में 40,000 से ज्यादा पक्षियों को मारे जाने की सूचना दी है। ये प्रकोप अब वहां 11 से अधिक जिलों में फैल गया है। रोकथाम के प्रयास के बीच पशुधन अधिकारी मुर्गी पालकों और आम लोगों से सतर्कता बरतने का आग्रह कर रहे हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति हुसैन अली मुविन्ने ने कल तंजानिया में भारतीय उच्चायुक्त विश्वदीप डे के साथ भेंट में जंजीबार के विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की।

0: सराहना की। तंजानिया के राष्ट्रपति ने जंजीबार में स्टेट हाउस में उच्चायुक्त विश्वदीप डे का स्वागत किया। उन्होंने विशेषकर निवेश, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की अहम भूमिका की सराहना भी की। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: सबसे पहले बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल विश्व कप में मेक्सिको इक्वाडोर को हराकर अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। अब रविवार को नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। उधर मोरक्को, पैराग्वे और कनाडा भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। उधर क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे स्टर्ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। वहीं महिला टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के ओवल में कल पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से पराजित किया। रविवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। कल ओवल में दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। हॉकी की बात करें तो भारत ने बेल्जियम दौरे के लिए 21 वर्ष से कम उम्र की पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। ये मुकाबले 5 से 18 जुलाई तक खेले जाएंगे। ये दौरा इस वर्ष के आखिर में होने वाले FIH जूनियर एशिया हॉकी से पहले तैयारियों का अहम चरण होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल आपका स्वागत करती है। समय हो चला है 10:31 और ये जो समय है दिल का मेल बॉक्स। जी हाँ, जहाँ आपकी पसंद हम तक पहुँचती है, आपकी फरमाइशों के गीत आप हम तक पहुँचाते हैं। तो जल्दी से कैसे जुड़ सकते हैं, आपकी फरमाइशें हम तक कैसे पहुँच सकती है, नोट कीजिए हमारी ईमेल आईडी fmgoldaird@gmail.com। और देखिए, हमने मेल आईडी बताई है और आपकी फरमाइशों के पिटारे हम तक आने शुरू हो गए हैं। तो आ रही है, जल्दी से हम आपके नामों को यहां पर सम्मिलित करते हैं। ताज मोहम्मद जी हमें लिखते हैं, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, कोई भी गीत सुनवाकर हमारे नाम को शामिल कीजिए। जी बिल्कुल। सतीश अनेजा जी लिखते हैं, नमस्कार, आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंटेशन विच एनहेंसेज द प्रोग्राम, थैंक यू सो मच सर। सुनना चाहते हैं लोफर फिल्म से ये गीत। जी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन नाम पहले मैं ले लूं आपके। तुलसी जी कार्यक्रम में जुड़ी है, जय राजू मिगलानी जी, साथ ही धर्मेंद्र छिपा जी हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार हमें मेल प्राप्त हो रहे हैं। बौद्ध राज खोरवाल जी भी जुड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज का ये गीत पहले हम शुरू करेंगे लता मंगेशकर जी की आवाज में, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना है और मोस्टली मैं देख पा रही हूँ जितने भी मेरे पास मेल्स आ रही हैं वो मौसम से रिलेटेड ही आ रही हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए, गीत आपको सुनवा रही हूं मैं ये मौसम के ऊपर, सावन के ऊपर, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहली बारिश इस सावन के महीने में आती है, उससे जुड़ी कोई खूबसूरत याद आप हमसे साझा करें।

जी हाँ, सावन का महीना बस शुरू हो ही गया है या होने वाला है, क्योंकि आज मौसम को देखकर तो हमें आभास हो गया है कि भाई सावन आने वाला है। जी हाँ, ऐसे में जो मेरा सवाल था कि पहली बारिश में आपको अपनी जिंदगी का कौन सा किस्सा याद आया। देखिए, हमसे हमारे जो लिसनर्स हैं वो जुड़ चुके हैं, सुनना चाहते हैं MO फरमान जी, कोई भी गीत, सीताराम जी, तुलसी मस्कीन जी और अनु जी, कमल जी, संदीप जी, मल्होत्रा, संदीप जी, और साथ ही हमें लगातार मेल प्राप्त हो रहे हैं मोहम्मद कलीम अंसा जी का और सुमेरा प्रवीण जी। जो मैंने पूछा था, सुमेरा प्रवीण जी मुझे लिखते हैं कि हम वो सावन की पहली बारिश को कैसे भूल सकते हैं जब हम मोटरसाइकिल से गिरते थे, चोट के निशान आते थे, तो वो बारिश उनको याद दिलाती है। जी बिल्कुल, वो जो बचपन की यादें है ना बारिश की, उसकी बात ही अलग है। बारिश की बात चल रही है, मौसम मानसून का है, सावन का है, तो आइए एक और गीत आपके लिए इसी पर।

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं रोशन लाल देवांगन जी, कौशल्या जी, हेमलता डिंपल जी, सब परिवार कार्यक्रम सुन रहे हैं और लिखते हैं कि आपकी प्रस्तुति अच्छी चल रही है और गीत का जो चयन है वो इन्हें पसंद आ रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। डीके जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं, बरसात की भीगी हवाओं में सावन का समा छाया है, हर बूंद जैसे आज फिर एक नया तराना सुनाया है जी। उत्तम नगर से हमारे साथ जुड़े हैं और एसपी गोयल जी, हाय हाय रे ये मजबूरी गीत सुनना चाहते हैं। रोहिणी दिल्ली से सतप्रकाश गोयल जी हमसे जुड़े हैं और जल्दी से देखते हैं कौन है। भारत भूषण जी जुड़े हैं, लिखते हैं, नमस्कार अंशु अग्रवाल जी, अभी वैसे तो सावन आता नहीं ले आया जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, सावन आता नहीं है ले आया जाता है, लेकिन जो भी है सावन की सुगंध, सावन की खुशबू, सावन की मिट्टी की जो सुगंध है वो हम मना सकते हैं क्योंकि आज मौसम हमें कहीं ना कहीं ये आभास दिला रहा है। तो अगला जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए कि बारिश का मजा सबसे ज्यादा कहाँ आता है? खिड़की के पास बैठकर चाय पीने में आता है या फिर भीगते हुए लंबी सैर में कहीं किनारे पर रुककर गर्मा गर्म समोसे और चाय पीने का आता है?

कार्यक्रम में बबलेश पनवार जी हमसे जुड़े हैं और लिखते हैं कि बचपन की बारिश हमें याद आती है, कागज की वो नाव बनाना, पानी में उनको तैराना याद आता है आज भी मुझको, बचपन का वो सावन सुहाना। वाह क्या बात है जी, बिल्कुल आपकी बात सुनकर तो मुझे भी बचपन की याद आ गई है और सच में जब हम बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लगता है। और गुरजोत सिंह खालसा जी का हमें आया है मेल, लिखते हैं कि बारिश का मजा विंडो के पास सिर्फ बारिश को देखने में महसूस करने में आता है। जी ठीक है। डीके जी का आया है कि प्रोग्राम के नखों में अच्छे लग रहे हैं, कृपया हमारा नाम भी शामिल कीजिए। जी बिल्कुल, उत्तम नगर से आप हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बासी जी हमें लिखते हैं कि चाय पकौड़ों के साथ बारिश का मजा कुछ और ही है, बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल, ये आपने मेरे मन की बात की है। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं शांति नगर सोनीपत से और लिखते हैं बारिश का मजा सबसे अधिक बालकनी में बैठकर बारिश को देखने में आता है। तो ठीक है, सबके अलग अलग विचार है, किसी को बारिश को देखने में मजा आता है, किसी को बाहर निकलकर सैर सपाटे में मजा आता है।

जी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। फारूक अली खान जी हमें लिखते हैं, बारिश का असली मजा वो आम के बागों में आता है जी। और भागवत वर्मा जी हमसे जुड़े हैं, एफएम गोल्ड सुन रहे हैं सब परिवार। रुद्र वर्मा जी, विनीता जी, लीलावती जी, शांति देवी जी और भागवत जी आप साथ में हमसे जुड़े हैं। अनवर सबरी जी सब परिवार, शन्नो, मुद्दस सिर, मुजफ्फर और जरीफ जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और लिखते हैं कोई भी गीत अपनी पसंद का सुनना चाहते हैं। साथ ही लखपत जी भी हमसे दिल्ली से जुड़े हैं, आनंद पर्वत से, और सब परिवार जुड़े हैं। देखिए बहुत खुशी होती है जब आप सब परिवार जुड़ते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो कार्यक्रम है और एफएम गोल्ड जो हम आपके लिए लेकर आते हैं वो वाकई ही खरा सोना है। वो खरा सोना इसलिए है कि आप अकेले नहीं सब परिवार हमसे जुड़ रहे हैं, तो परिवारों को और आपस में जोड़ने का भी काम कर रहा है ये कार्यक्रम, तो बहुत खुशी होती है। अगला गीत आपके लिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी की आवाज में, चलते चलते एक शब्द में जरा बताइए आपके लिए जिंदगी के क्या मायने हैं, जिंदगी क्या है।

जी हाँ दोस्तों, दिल का मेल बॉक्स जहाँ आपकी फरमाइशें हम तक पहुँचती हैं। और मेरा जो सवाल था कि जिंदगी आपके लिए क्या है, देखिए फारूक अली खान जी और हमसे जुड़े हैं महेश अग्रवाल जी, प्रकाश जी, DKP परिहार जी और साथ ही भगवती सिंह जी भी हमसे जुड़ी हैं और लिखते हैं कि जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए, सेहत का ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। और संदीप जी लिखते हैं

जिंदगी में हमेशा खुश रहना और सभी का भला सोचना, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बात कही। हम खुश तो रहना है, लेकिन खुशी में हम अक्सर ये सोचते हैं कि बस हम खुश हैं तो हमें दूसरों से क्या लेना है, लेकिन नहीं, खुशी का मतलब ये है कि जब हम दूसरों को भी खुशी दें, हम काम ऐसा करें कि दूसरे भी हमसे खुश हों या दूसरे हमसे इंस्पायर हों और समाज में, सोसाइटी में कुछ अच्छा काम करें, तो खुशियाँ खुद भी हम रहें और खुशियों को हम बांटें भी। साथ ही लगातार हमें मेल प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अभी हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर हैं क्योंकि 11 बजने को हैं बस, और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और मैं आपसे फिर जुड़ूंगी, आप कहीं नहीं जाएंगे। 11:10 पर आज भारत भ्रमण में हम आपके लिए कहाँ लेकर जाएंगे आपको अभी बता देती हूँ। चलिए, आज हम जाएंगे मेघालय चेरापूंजी में। जी हाँ, तो कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं और कब जा सकते हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आपको तस्वीर कार्यक्रम में देने वाली हूं। जुड़े रहें और अच्छे अच्छे पुराने नगमे गीत तो आपके लिए होंगे ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू होंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। इस पहल में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे गांव में आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे, परिसंपत्ति सृजन की गति तेज होगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और स्वावलंबी ग्रामीण भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी अंशु अग्रवाल और समय हो चला है 11:11। और आज भारत भ्रमण में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम निकल पड़े हैं चेरापूंजी, जो कि मेघालय में है। जल्दी से आपको बताते हैं, लेकर चलेंगे, इतिहास को जानेंगे, कहाँ घूम सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, कौन से मौसम में जाया जा सकता है, ये सारी जानकारी आज के इस तस्वीर कार्यक्रम में मैं आपको देने वाली हूँ। तो आपको लेकर चल रहे हैं भारत के उत्तर पूर्व में बसे एक ऐसे स्वर्ग में, जहाँ बादल धरती को छूते हैं, झरने संगीत सुनाते हैं और हरियाली आंखों को सुकून देती है। इस खूबसूरत जगह का नाम तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन ये भी बता दें कि इसे स्थानीय भाषा में सोहरा भी कहा जाता है। आगे और बातचीत करेंगे। मुझे पता है आपके मन में अभी ये आ रहा है कि जल्दी से वहां पहुंचे, तो कैसे पहुंचना है ये बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद।

जी हाँ दोस्तों, ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ? हमें तो पता है, हम पहुंच चुके हैं चेरापूंजी, लेकिन पहुंचे कैसे, यही तो सवाल है। चलिए, आपकी इस दुविधा का हल लेकर मैं आ गई हूँ। अगर आप हवाई मार्ग से प्लान कर रहे हैं जाने का, तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा आपको पड़ेगा शिलोंग और गुवाहाटी का। गुवाहाटी से शिलोंग लगभग 100 किलोमीटर है, और शिलोंग से चेरापूंजी अगर आप जाते हैं वहां पर, तो करीबन आपको 54 किलोमीटर की दूरी पर ये मिलेगा। शिलोंग से अगर हम बात करें, तो टैक्सी या साझा कैब की वहां पर फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। और सच मानिए दोस्तों, रास्ता इतना खूबसूरत है कि सफर कब पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप रेल से अपनी यात्रा को प्लान कर रहे हैं, तो रेल के लिए गुवाहाटी का सबसे निकटतम बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो गुवाहाटी उतरकर आप रेल के माध्यम से इस खूबसूरत जगह पर पहुंच सकते हैं। तो ये हो गई जानकारी कि कैसे पहुंचा जा सकता है। और मुझे पता है कि ये जानकारी लेने के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि बस कहीं दूर निकल जाए।

तो दोस्तों, दूर तो हम निकल आए हैं और निकलते निकलते हम पहुंच चुके हैं चेरापूंजी, जो कि मेघालय में है। अब बात आती है कि पहुंच चुके हैं और या कुछ लोग अगर पहुंचने वाले हैं या कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमें वहां पर जाना है, टिकट करवानी है, लेकिन कब जाएं, कौन से मौसम में जाएं, बहुत बड़ा सवाल है। क्या गर्मी में जाएं तो गर्मी लगेगी, बारिश के मौसम में जाएं तो बारिश होगी, तो कौन सा महीना आपके लिए वहां जाने के लिए सबसे बेहतरीन है? अगर आप हरियाली, बादल और झरने का असली जादू देखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा मौसम रहने वाला है और सबसे अच्छा महीना जून से सितंबर तक का महीना सबसे बढ़िया है। हालांकि इस दौरान थोड़ी बहुत वहां बारिश रहती है, लेकिन आराम से आप घूम सकते हैं। और अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो भी मौसम बहुत ही सुहावना रहता है और आप प्लान कर सकते हैं अक्टूबर से अप्रैल के महीने में।

जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.1 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु अग्रवाल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तस्वीर। भारत भ्रमण करते हुए आज हम पहुंचे हैं मेघालय में चेरापूंजी में। तो हमने अपनी टिकट्स बुक करवा ली हैं क्योंकि हमें ये पता लग चुका है कि हमें वहाँ कब जाना चाहिए, कौन से महीने में, कौन से मौसम में हमें वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन अब वहाँ पहुँचने के बाद आखिर कहाँ कहाँ घूमें, जल्दी से नोट कर लीजिए और एक अच्छी सी आइटनरी बना लीजिए। तो कहाँ घूम सकते हैं, सबसे पहले आप वहाँ जाएं तो भारत के सबसे ऊँचे वाटरफॉल को देखना ना भूलें। आपको बता दें, करीबन 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता यह झरना आपको देखने के बाद किसी चित्र से कम नहीं लगेगा। इस वाटरफॉल का नाम है नोहकालिकाई जलप्रपात। आप जरूर जाएं यहां पर। और इसके बाद में आप यहां पहुंचने के बाद में प्लान कर सकते हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज की एक खासियत है, ब्रिज सुनकर, पुल सुनकर आपके मन में आता होगा कि किसी सीमेंट या लोहे का बना होगा, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? आपको बता दें कि ये जो पुल है ये किसी भी सीमेंट और लोहे से नहीं बना है, बल्कि ध्यान से सुनिएगा, बल्कि रबर के पेड़ों की जड़ों से इस पुल को बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और एक और बात, इसको देखने के लिए लगभग 3000 सीढ़ियों की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। अब सोचिए, ट्रैक करके अगर आप उस पुल तक पहुंचेंगे तो मंजिल की जो थकान आपको हुई है, जो सफर में थकान हुई है, वो इस मंजिल तक पहुंचने के बाद आपकी सारी थकान को भुला देगी। इसके बाद आप डैनथेलिन फॉल्स भी जा सकते हैं, जो कि एक बेहद शांत और खूबसूरत झरना है। इको पार्क जा सकते हैं, सेवन सिस्टर्स फॉल्स, जी हाँ, यहाँ जाना ना भूले। यहाँ पर बरसात के मौसम में 7 धाराओं में बहता एक जलप्रपात आपको बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देगा। तो ये आपके लिए एक आइटनरी आप बना सकते हैं, और जाएं तो जरूर यहां पर आप सभी घूमकर आए। तो टिकट बुक करा ली है जल्दी से, क्योंकि आप सभी की आपको गाड़ी बुला रही है।

जी हाँ दोस्तों, तो गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी तो बुलाई गई क्योंकि इतनी सारी जो जानकारी हमने ली है, मन जो है वो आप सभी का मैं जानती हूँ, आप थोड़ा सा विचलित हो उठा है। तो चलिए, वहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ घूम चुके हैं, अब बात आती है कि आखिर पेट पूजा कैसी की जाए। पेट पूजा बहुत जरूरी है, यानी खाने में क्या खाया जाए। तो आपको बता दें, वहाँ का कुछ स्थानीय बहुत ही जो भोजन है, सादा है, पौष्टिक है, लेकिन बहुत ही स्वाद है। वहां जाएं तो जरूर आप लोग चखे जादोह, नोट कर लीजिए। जादोह होता है चावल और मसालों से बनने वाला वहां का पारंपरिक व्यंजन। साथ ही वहां पर तुंगरी बाई, यहाँ का एक सोयाबीन से बनने वाली स्थानीय डिश है। तो आप वहां जाएं तो ये भी वहां पर आप जाकर टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही काले तिल की ग्रेवी में बनने वाला एक व्यंजन जिसका नाम है दोहने इयोंग, ये भी वहां का बहुत ही प्रसिद्ध आहार है। तो ये सब आप जाएं तो जरूर वहां पर खाएं। और साथ ही वहां पे बांस की कोपलों की बनी सब्जियां बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं, और स्थानीय लाल चाय और ताजा अनानास। जी हाँ, वहां जाएं तो ताजा अनानास खाना बिल्कुल ना भूले। और जब इतनी सारी ये मीठी मीठी रसीले पदार्थों की जब बात होती है, तो फिर दिल कहता है ना कि आज फिर जीने की तमन्ना होती है बस।

जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.1 MHz पर, सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं हूँ आपके साथ अंशु अग्रवाल, कार्यक्रम तस्वीर जहाँ भारत भ्रमण में आज हम बात कर रहे हैं, पहुँच चुके हैं मेघालय के चेरापूंजी में। जी हाँ, तो पहुँच चुके हैं और टिकट्स भी हमने बुक करवा ली हैं, और वहाँ का खाना क्या क्या हमें खाना चाहिए, तो यानी कुल मिला के पेट पूजा हमारी हो चुकी है। अब हम आते हैं हमारे सबसे ज़रूरी काम पर, और वो है शॉपिंग। जी हाँ, तो क्या खरीदे, बात करते हैं। अगर आप चेरापूंजी जाएं तो वहां पर स्थानीय हस्तशिल्प जरूर खरीदे। जी हाँ, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बता दें, वहां की ऑर्गेनिक काली मिर्च और वहां के मसाले आप खरीदना ना भूलें, साथ ही वहां का स्थानीय शहद जो कि बिल्कुल शुद्ध माना जाता है, और वहाँ का स्थानीय शहद है, वहाँ की एक धरोहर भी कही जाती है, तो उसको भी आप जरूर खरीद सकते हैं। साथ ही वहाँ की जनजाति है खासी, तो खासी जनजाति की कुछ पारंपरिक कलाकृतियाँ भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जिसे अगर आप चाहें, कला के प्रेमी हैं, तो आप उनको भी खरीद सकते हैं। साथ ही हाथ से बुनी हुई शॉल और स्टॉल्स भी आप खरीद सकते हैं, और बांस और बेंत से बने बहुत से वहाँ पे उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे, वो भी आप अगर चाहें तो खरीद सकते हैं, और चाहें तो मेरे लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है। जी हाँ, कार्यक्रम तस्वीर और हम बात कर रहे हैं चेरा पूंजी की। आपको बता दें, चेरा पूंजी में इतनी बारिश होती है कि यहाँ के लोगों ने बारिश को अपने जीवन का सामान्य हिस्सा मान लिया है। और जैसा कि हमने आपको जब बताया कि आप जब चेरापूंजी पहुंचे तो कहां आपको घूमना चाहिए, तो यहां के जो हमने बात की लिविंग रूट ब्रिज के बारे में, आपको बता दें ये कुछ रोचक तथ्य हैं जो मैं आपसे साझा कर रही हूं। इस रूट ब्रिज को इंसानों और प्रकृति के अद्भुत सहयोग का उदाहरण माना जाता है और इसे बनाने में कई दशक लगे। और ये भी इसके साथ में माना जाता है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया ये कोई सीमेंट का ब्रिज नहीं है और सैकड़ों वर्षों तक ये जो ब्रिज हैं, जिस हिसाब से ये बनाए जाते हैं, ये काफी सीखने वाली बात है। और यहाँ की खास बात ये भी है कि साफ मौसम में यहाँ से बांग्लादेश के मैदानी इलाकों का नजारा भी हमें देखने को मिलता है।

जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे चेरा पूंजी की, और आपको बता दें कि अगर आपको प्रकृति से प्यार है, बारिश की बूंदें अच्छी लगती हैं और शहर की भाग दौड़ की जिंदगी से कुछ दिनों के लिए आप सुकून के पल अगर ढूंढ रहे हैं तो चेरा पूंजी जरूर जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी मंजिल है जिसे जीवन में कम से कम एक बार तो जरूर देखना चाहिए।

कोई माने न माने, मैं तो कहता हूँ उनको खुदाओं के खुदा मेरा यार।

0: तो हसीन वादियों की बात हो गई, बारिश की बात हो गई, सुहावने मौसम की बात हो गई, तो ये जिस जगह को आज हमने जाना उसे अपने दिल के कूचे में बसा लीजिए, चेरापूंजी जरूर जाकर आए, और जो जो जानकारी आज आपको यहाँ मिली है उसको सम्मिलित कर कर अपने जिंदगी के, अपने जीवन की भागती दौड़ती जो समय है उसमें से थोड़ा सा समय निकालें अपने लिए, अपनों के लिए, और जरूर इस जगह को छूकर आए और महसूस कर कर आए। समय होने वाला है आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, कुछ ही देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: Medium wave kilohertz xtong ap chung aksum yang na meters ngib ki kachu kyapshi tang shuzur ko yang fm megahertz kya dang chik tang shuzur chi ka nga shi akashwani len shwen chik tang nime chu zod chungis charu kasata chu zod chungis tang pe chuk pa film melu rik sana chadin ina ngas ngol la raja film melu udit narayan tang alka yakting isko ni sana chadin

कैसे ता राजा हिंदुस्तानी फिल्म लो अलका याग्निक ने सरजदिन लूर सुमकन समीर या लो आश्रिकन नदीम श्रवण।

फिल्म में लोगों ने डिग्री में ना कसता दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में लो लता मंगेशकर तंग उदित नारायण इसको ने सरसा दिन आनंद बख्शी लोयांग श्रीकंद जतिन ललित।

फिल्म में लोगों ने डिग्री मिस थिंग जुक पे का कसता कुछ कुछ होता है फिल्म में लो उदित नारायण थंग अलका याग्निक इसको ने सनजदिन समीर लो अयांस्टिकन जतिन ललित।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
3: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
3: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
3: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
3: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
3: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
3: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
3: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है। तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
3: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
3: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
2: जी।
3: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
2: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
3: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
2: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुँचा है।
3: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
2: जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
3: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
2: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
3: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
2: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
3: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
2: जी,
3: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
2: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
3: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
3: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
3: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
3: अरावली की कहानी।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद।
6: धन्यवाद सर।
4: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
7: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
7: वाह, क्या बात है
8: मैम।
7: हाँ बेटी,
8: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
7: बिल्कुल कहा।
8: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
7: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
8: जी, पहाड़ी।
4: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
7: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
5: यस मैम।
7: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
5: अच्छा।
7: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
5: अच्छा।
7: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
5: मैंने भी देखा है।
4: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
6: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
7: बिल्कुल जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
8: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
7: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
5: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
4: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
7: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
6: जी मैम,
8: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
4: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
7: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
8: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
7: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
5: सॉइल इरोजन,
7: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
4: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
7: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
5: हाँ, जी मैम।
8: यस मैम।
7: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
8: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
7: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
8: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
7: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और

0: जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
1: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
5: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगोई है ना।

0: वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
0: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
0: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
0: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
0: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
0: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
0: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला। फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
0: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
2: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: अरे वाह, ये भी
0: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
2: मैं बोलो। अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हमी में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करें? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया अनाज मांगने वाले, करो।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग चार दिनों तक चलती रही।
5: मुखिया जी, मुखिया जी!
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों, इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
6: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
6: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी,
6: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
6: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं।
3: मुखिया जी, मुखिया जी,
6: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
3: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
6: चढ़ रहा है। अरे तो तीसरी मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
3: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है। हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
6: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
3: जैसी आपकी मर्जी।
6: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे कहां जाऊं मैं? ये पानी में डूब रहा हूं मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है, अरे बचाओ मुझे, अरे मैं डूब रहा हूं मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच ही गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: Dawson Ishrangi, NCRT Chintakzat Kane Degrim, Umang Senatat. Dering Ishrangi Degrim, a Kakston Chikno Sumgia, Jobgatpa, Sanchez Lapultenpin. Naje, Akashwani Lady Shuinjiktain, Yimichuzo, Jik Charuk. Kasata Akashwani Deline, Skola Hindi, and Testing Ne, Arizona Nasul Senatat.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि VBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहले जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. Marking the 11 years of the initiative, Mr. Modi said that Digital India has touched every aspect of life. He underscored that seamless digital payments and direct benefit transfers are reaching beneficiaries with transparency. Mr. Modi said that technology has become a powerful instrument for furthering ease of living. Home Minister Amit Shah has said that the government has transformed India into a digital nation by expanding digital connectivity, strengthening digital governance, and improving access to public services. Marking 11 years of the Digital India initiative, Mr. Shah said the country has witnessed significant progress in internet connectivity, digital infrastructure, and technology-driven governance. In a social media post, he said that over 103 crore people are now connected to the internet, while more than 2,20,000 villages have been linked through BharatNet. Revised wage rates under the Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 have become effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. The ministry said for the first time an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under MG Narega to 327.4 rupees per day under Viksit Bharat Ji Ramji. 21 states and administrative units which previously had wages below 300 rupees have now been brought up to the new benchmark. Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. In Uttar Pradesh, 5 people, including 2 minor girls, were killed after a sleeper bus collided with a car on the Agra-Lucknow expressway in the wee hours today. According to the officials, the sleeper bus was travelling from Haryana to Bihar, while the car was heading from Agra towards Lucknow when the speeding bus hit the car from behind. After the collision, the bus fell off the expressway and overturned. The impact was so severe that the car was completely mangled and dragged for nearly 20 feet on the expressway. With the help of locals, injured people were rescued and rushed to the community health center, Bangarmau. Those with serious injuries were referred to the district hospital. Noted film and theatre personality Vijaya Mehta passed away at a Mumbai residence last night at the age of 92. She was one of the pioneers of experimental Marathi theatre. Fondly known as Bai, Vijaya Mehta introduced a new theatrical language, fresh perspectives and a globally informed approach to Marathi stagecraft through the theatre group Rangayan. Her landmark productions include Barrister, Sakharam Binder, Hamidabai Chi Koti, among others. As a teacher and mentor, she trained several generations of actors and theatre practitioners. Vijaya Mehta was honoured with the Sangeet Natak Academy Award in 1975. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the passing of the veteran theatre director and remembered her creativity and commitment to artistic excellence. Prime Minister Narendra Modi today hailed the efforts of doctors and medical professionals who are working in Venezuela as a part of Operation Amistad. In a social media post, he said that in such a challenging time, the efforts to serve those in need are shining examples of how medical professionals rise to the occasion every time the society faces a challenge. India launched Operation Amistad in response to devastating earthquakes in Venezuela that caused extensive loss of life, injuries and widespread destruction. Operation Amistad is a humanitarian assistance and disaster relief mission in a gesture of solidarity with the people of Venezuela. On the second day of the higher-level assessment tour, Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju, accompanied by Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu, conducted an aerial survey of flood-hit areas in the state today. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 284.9 meters यानि 1053 kHz और FM 101.1 MHz पर हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम।

जय हिंद फौज भाइयों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस मन पसंदीदा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में। फौज भाई अपने इस वक्त के कार्यक्रम में सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं कुछ ना कहो फिल्म से गीत, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं शंकर एहसान और लॉय।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म से गीत उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं अनु मलिक।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं दिल तो पागल है फिल्म से गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। आनंद बख्शी की रचित गीत को संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

आइए फौजी भाइयों, अगला गीत सुनते हैं जिसे हमने लिया है बाजीगर फिल्म से, आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाज़ों में। जफर गोरखपुरी के रचे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

आइए श्रोताओं सुनते हैं उदित नारायण और उदित नारायण कुमार, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति को इश्क फिल्म में। गीतकार हैं राहत इंदौरी और संगीतकार हैं अनु मलिक।

कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनते हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति, एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं जतिन ललित।

जाते जाते कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कोई मिल गया फिल्म से गीत। शान कविता कृष्णमूर्ति बेबी स्नेहा की आवाज़ों में। गीतकार हैं नसीर फराज और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 11 बरस के दौरान डिजिटल इंडिया ने गरीबों और महरूम तबकात को बाख्तियार बनाया है और लाखों अफराद के रहन सहन में आसानी पैदा की है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट के तहत उजरतों में इजाफा आज से लागू हो रहा है। फौजी अमले के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने फौज के 31वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी पर जोर दिया। मरकजी ओदरा शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि आइंदा दो रोज के दौरान मानसून के दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब की जानिब बढ़ने का इम्कान है और फीफा आलमी कप में मैक्सिको इक्वाडोर को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया मुहिम ने हुक्मरानी के निजाम को नई शक्ल दी है, शहरियों को बाइख्तियार बनाया है और हमाजहत तरक्की को तेज किया है। मुहिम के 11 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल इंडिया ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आसान डिजिटल अदायगी और फवायद की बराह रास्त मुंतकली DBT के जरिए मुस्तफिदीन तक शफाफ अंदाज में सरकारी स्कीमों के फवायद पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी आवाम की जिंदगी को आसान बनाने का एक मुअस्सर जरिया बन चुकी है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने गुज़श्ता 11 वर्षों में मुल्क भर के शहरियों के लिए राबते, तालीम, माली लेन देन और सरकारी खिदमात तक रसाई के तरीकों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इस अरसे में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे DPI निजाम में से एक कायम किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खसूसन देही और पसमानदा इलाकों में सेहत, तालीम, हुनरमंदी, ज़राअत और फलाही खिदमात तक रसाई को उसत दी है। पेश एक रिपोर्ट।
1: भारत तेजी से डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे DPI के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभर रहा है। इस कामयाबी की बुनियाद काबिले तौसी और शहरियों पर मरकूज डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के निजाम में ताउन के लिए 24 मुल्कों के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल शनाख्त, डिजिटल अदायगी, डेटा के तबादले और सरकारी खदमात की फराहमी जैसे शोबे शामिल हैं। अदायगियों का यकसा इंटरफेस UPI अब 8 से ज्यादा मुल्कों में काम कर रहा है, जिनमें मुत्तहदा अरब अमारात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका शामिल हैं। इससे आलमी सतह पर मालियाती टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत की मौजूदगी मजीद मुस्तहकम हुई है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म्स आलमी सतह पर डिजिटल हुक्मरानी के नए मॉडल की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के तहत नजरसानी शुदा योमिया उजरत आज से नाफिज हो गई है। देही तरक्यात की वजारत के मुताबिक तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में उजरतों में इजाफा किया गया है। वजारत ने कहा कि पहली बार 300 रुपये योमिया उबूरी बुनियादी उजरत मुकर्र की गई है ताकि इस स्कीम के तहत किसी भी रियासत में मजदूरी इस हद से कम न हो। MGNREGA के तहत उजरत की कौमी औसत योमिया 298.80 रुपये थी, जो कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट के तहत 327.40 रुपये हो गई है। इसके अलावा 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में जहां पहले योमिया उजरत 300 रुपये से कम थी, अब उसे भी नए मेयार तक बढ़ा दिया गया है। फौजी अमले के नए सरबराह जनरल धीरज सेठ ने सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी की जरूरत पर जोर दिया है। फौजी अमले के 31वें सरबराह की जिम्मेदारी संभालने के बाद आज मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सेठ ने टेक्नोलॉजी से लैस और मुस्तकबिल के लिए तैयार एक ऐसी भारतीय फौज के मकसद को उजागर किया जो हर मामले में बाइख्तियार हो और हर सूरत हाल में कार्रवाई करने की सलाहियत रखती हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: उन्होंने कहा कि फौज सरहदों और उभरते हुए खतरात के सिलसिले में मुसलसल चौकसी बरकरार रखेगी और कौमी सलामती को लाहक किसी भी चैलेंज से मुअसर तौर पर निमटने के लिए कार्रवाई की आला सतही तैयारी रखेगी। जनरल सेठ ने कहा कि उनकी तवज्जो नजरियाती और तकनीकी दोनों हल पर रहेगी।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: पासपोर्ट से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 के तहत नए पासपोर्ट की दरखास्त की फीस में आज से इजाफा कर दिया गया है। फीस के नजरसानी शुदा निजाम के तहत 36 सफहात के नए पासपोर्ट या पासपोर्ट दोबारा हासिल करने के लिए अब 2500 रुपये अदा करने होंगे। 60 सफहात के नए आम पासपोर्ट या उसे दोबारा हासिल करने के लिए 3500 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, जबकि तत्काल स्कीम के तहत 6000 रुपये देने होंगे। 36 सफहात के पासपोर्ट के खो जाने या उसे नुकसान पहुंचने की सूरत में उसकी जगह आम पासपोर्ट फिर से हासिल करने के लिए फीस 5000 रुपये होगी। 60 सफहात के पासपोर्ट के खो जाने या उसकी जगह आम पासपोर्ट फिर से हासिल करने के लिए 6000 रुपये फीस तय की गई है। पानी के पायदार बंदोबस्त और आबपाशी में काबिल जिक्र तौसी के जरिए जरिए तब्दीली में पेशरफ्त के सिलसिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 से ज्यादा साल मुकम्मल हो गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आगाज 1 जुलाई 2015 को हुआ था और इस स्कीम के तहत मुल्क भर में आबपाशी को मुस्तहकम, पानी के मुअसर इस्तेमाल में बेहतरी और पानी की बचत को फरोग देने को यकीनी बनाया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वज़रा शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के मुआयने के दूसरे रोज वजीर आला पेमा खांडू के हमराह आज मुतासरा इलाकों का फजाई सर्वे किया। टीम ने पहले मशरकी सियांग जिले के शहर पासीघाट का दौरा किया, जो सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में शामिल है। इसके बाद बोइंग गांव पहुंचकर जमीनी सतह पर नुकसान का जायजा लिया। अचानक आने वाले सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के बायस गांव में 20 से ज्यादा मकान तबाह हो गए, जबकि धान के खेत, खड़ी फसलें और मवेशी भी शदीद तौर पर मुतासिर हुए, जिससे कई खानदान मुश्किलात का शिकार हैं। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने बेघर होने वाले मुतासिरीन से मुलाकात की और उनकी मुश्किलात मालूम की। अब तक रियासत में 4 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए हैं। 90,499 अफराद मुतासिर हैं। तकरीबन तमाम 28 जिले इस आफत से मुतासिर हैं। दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 आज से नाफिज हो गई है। इस नई पॉलिसी के तहत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स नहीं होगा। इस नई पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करते हुए नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 1 लाख रुपए की रियायत भी दी जाएगी और ये पॉलिसी इस बात को भी लाजमी बनाती है कि अप्रैल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ियां ही रजिस्टर होंगी। 4 साल में मरहलावार तरीके से नाफिज होने वाले इस अहम तरीक़ेकार पर 15,000 करोड़ रुपये के माली अखराजात होंगे। आशिया और खिदमात टैक्स GST की वसूलियाबी गुज़श्ता महीने बढ़कर 1,94,812 करोड़ रुपये हो गई, जो जून 2025 में 1,71,105 करोड़ रुपये से साल ब साल 13.9% का इजाफा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि आइंदा 2 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की जानेब बढ़ने का इम्कान है। फीफा आलमी कप में आज सुबह मैक्सिको सिटी स्टेडियम में मैक्सिको ने नॉकआउट मुकाबले में इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया और प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये 40 बरस में आलमी कप में नॉकआउट मरहले में मैक्सिको की पहली जीत है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 11 बरस के दौरान डिजिटल इंडिया ने गरीबों और महरूम तबकात को बाइख्तियार बनाया है और लाखों अफराद के रहन सहन में आसानी पैदा की है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट के तहत उजरतों में इजाफा आज से लागू हो रहा है। फौजी अमले के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने फौज के 31वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज की जदीदकारी पर जोर दिया। मरकजी वज़रा शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना किया और फीफा आलमी कप में मैक्सिको इक्वाडोर को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashwani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat Ji Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dhirat Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. Prime Minister Narendra Modi has said Digital India initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. The Prime Minister said 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged and made life easier for millions. He said Digital India has touched every aspect of life. He underscored the seamless digital payments and direct benefit transfers are reaching beneficiaries with transparency. Mr. Modi said that technology has become a powerful instrument for furthering ease of living. The ambitious Digital India program of the government was launched this day in 2015. Since then, it has shaped how citizens connect, learn, transact and access public services across the country. India has built one of the world's largest digital public infrastructure ecosystems. We have more from a correspondent.
4: India is emerging as a global leader in digital public infrastructure, DPI, driven by scalable and citizen-centric digital governance platforms. India has signed Memorandum of Understanding with 24 countries for cooperation on India's stack and DPI systems covering digital identity, payments, data exchange, and service delivery. UPI now lives in over 8 countries, including the UAE, Singapore, France, Mauritius, and Sri Lanka, strengthening India's global fintech presence. Platforms such as Aadhaar, DigiLocker, Cowin, Government e-Marketplace, Diksha, Umang and eSanjeevani are increasingly shaping international digital governance models. India also launched India Stack Global and the Global DPI Repository during its G20 presidency in 2023, expanding global access to Indian digital solutions. As Digital India enters its next decade, India is positioning technology as a tool for inclusive growth, digital empowerment and global cooperation. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
3: The Unified Payments Interface UPI transaction volumes rose 23% to over 22 billion in June on year-on-year basis, while UPI transaction value surged 20% to over 28 lakh crore last month. According to data released today by the National Payments Corporation of India, on an average basis, UPI processed around 757 million transactions daily in June. UPI is now live in more than 8 countries, including the UAE, Singapore, France, Mauritius and Sri Lanka, strengthening India's global fintech presence. Increased wages under the Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 have become effective across the country from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. The ministry said for the first time an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. We have more from our correspondent.
5: The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act to 327.4 rupees per day under VBG Ramji, marking an average increase of over 10%. 21 states and administrative units, which previously had wages below 300 rupees, have now been brought up to the new benchmark. The states of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh and Himachal Pradesh are among those witnessing significant hikes ranging between 15 and 25%. The ministry highlighted that Arunachal Pradesh and Nagaland have received the highest percentage increase of nearly 24.5%. States with already higher wages have also seen upward revisions. Haryana will now have a wage rate of 409 rupees, Goa 406 rupees and Kerala 401 rupees per day. In Sikkim's high altitude gram panchayats, the rate has been set at 450 rupees per day. Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. With Saklain Akhtar, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
3: Goods and services tax, GST, has strengthened India's vision of Ek Bharat Shreshth Bharat over the past 9 years. It has brought transparency, accountability and economic growth through rationalized tax rates and standardized procedures. Launched on 1st of July 2017, this day is marked as a historic achievement in India's reform journey. GST subsumes 17 different taxes and 13 cesses into a common framework. Meanwhile, GST collections in the month of June witnessed a rise to 1,94,812 crore rupees, marking a 13.9% year-on-year increase from 1,71,105 crore rupees in corresponding month last year. Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana PMKSY has also completed 11 years today. Launched on the 1st of July 2015, PMKSY scheme has assured irrigation, improved on-farm water efficiency and promoted sustainable water conservation across the country. Over the past decade, it has strengthened irrigation through rainwater harvesting and efficient farm-level water distribution under rainwater storage and efficient water application. The latest passport application hike fee has been implemented under the Passports Amendment Rules 2026 from today. Under the revised fee structure, a 36-page fresh passport or reissue of a passport will now cost 2,500 rupees. The fee for a 60-page ordinary passport or its reissue has now been fixed at 3,500 rupees, while under the Tatkal scheme, it will cost 6,000 rupees. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. President Draupadi Murmu today called upon the youth to pursue excellence with dedication, integrity and strong ethical values to help realize the vision of a developed Bharat by 2047. Addressing the first convocation of the Central University of Andhra Pradesh at Anantapur, as the chief guest, the president said, the energy, talent and commitment of the young people will play a decisive role in building an inclusive and prosperous nation.
6: Dear students, as you celebrate your achievements today, I urge you to pause for a moment to remember the people who made your journey possible. Your success is the result of your own hard work, but it has also been shaped by the sacrifices of your parents, the guidance of your teachers, and the support of society. Therefore, you have a responsibility to give back to the society.
3: The president noted that girls outperform boys in securing the medals, reflecting the growing aspirations and determination of young women in the country. She urged the graduates to continue learning throughout their lives and urged the students to use their knowledge for the benefit of society, particularly the underprivileged. Newly appointed Chief of Army Staff General Dhiraj Seth has stressed the need to advance the modernization of the army to tackle the challenges of the evolving security environment. Addressing the media today after assuming charge as the 31st Chief of the Army Staff, General Seth highlighted that the Indian Army's objective is to build a technology-enabled, future-ready army that is empowered in every respect and capable of operating across multiple domains.
7: Our objective is to build a technology-enabled, future-ready army that is empowered in every respect and capable of operating across multiple domains. Keeping these objectives in mind and drawing attention from the guidance provided by the Defence Minister under the decade of transformation, I have identified my key focus areas. I have consolidated them into an acronym VIJAY, that is V-I-J-A-Y. Each letter of VIJAY represents one of my priorities and I will briefly outline them.
3: On the second day of the higher level assessment tour, Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju, accompanied by Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu, conducted an aerial survey of flooded areas in the state today. The team first surveyed Pashighat in East Siang district, one of the worst affected regions, before visiting Boeing village to assess the damage on the ground. Flash floods and landslides have submerged more than 20 houses in the village and caused extensive damage to paddy fields, standing crops and livestock, leaving many families reeling from the devastation. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan interacted with the displaced villagers whose homes were destroyed, reassuring the community. Chauhan promised comprehensive financial and structural assistance from the central government, executing relief operations in close synchronization with the state administration. So far, the death toll is 4, while 21 others were injured in the state, where 90,499 people were affected in almost all 28 districts. Following their evaluation in Arunachal Pradesh, Union Ministers Chauhan and Rijiju crossed over into neighbouring Assam to inspect flood-ravaged sectors in that state. The India Meteorological Department, IMD, has said that the southwest monsoon is likely to advance over Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab during the next 2 days. The IMD has also issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall conditions over Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Odisha and Vidarbha during the next 2 days. Similar conditions also expected over parts of Chhattisgarh, coastal Karnataka, east Madhya Pradesh, Kerala and Mahe, Konkan and Goa and south interior Karnataka today. The Met Department has also predicted thunderstorm accompanied with lightning and gusty winds at isolated places over Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, East Rajasthan, Gangetic West Bengal and Andaman and Nicobar Islands till tomorrow. The Maharashtra Secretariat has issued a warning of heavy rainfall at isolated places in Mumbai City, Mumbai suburbs, Palghar, Thane districts over the next 3 hours, urging citizens to remain alert and take necessary precautions. Afghanistan's Ministry of Defense has said its forces carried out airstrikes against ISIS-linked targets in Pakistan. It said the attacks were carried out last night in Pakistan's Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa provinces. The strikes inflicted heavy casualties and significant financial losses on ISIS and its supporters. It added that the attacks were carried out with high precision against designated targets and caused no civilian casualties. The strikes came just days after 36 civilians, including women and children, were killed while 163 others were injured in Pakistani military airstrikes in Paktika and Kunar provinces of Afghanistan. National Doctors' Day has been celebrated today to honor doctors for their dedication, compassion and invaluable contribution to protecting and improving public health. The day is observed every year on the 1st of July to commemorate the birth and death anniversary of one of India's most respected physicians, Dr. Bidhan Chandra Roy. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted doctors across the country on the occasion. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has also extended greetings to the medical fraternity for his unwavering dedication. In a video message, Mr. Nadda lauded doctors across the country for their exemplary professionalism and compassionate service to humanity.
8: On the occasion of Doctors' Day, I extend my sincere appreciation and heartfelt gratitude to the medical fraternity for its unwavering dedication, exemplary professionalism, and compassionate service to humanity. Doctors are the cornerstone of our healthcare system, tirelessly working to alleviate suffering, save lives, and uphold the highest standards of patient care. Your selfless commitment and resilience continue to inspire the nation and strengthen our collective pursuit.
3: In FIFA World Cup, Mexico defeated Ecuador 2-0 in the round of 32 clash at the Mexico City Stadium this morning to qualify for the round of 16. Raul Jimenez and Julian Q scored for Mexico. This marked Mexico's first World Cup knockout stage win in 40 years. Earlier, Kylian Mbappe further enhanced his World Cup legacy to lead France to a comfortable 3-0 win against Sweden in the round of 32. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Norway has also sailed to the round of 16, beating Ivory Coast 2-1 in Texas. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat Ji Ramji Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dheeraj Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. And with that, we end the midday news.
9: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया मॉनसून के दो दिन में दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई अब समाचार विस्तार से डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने सीखने लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है एक रिपोर्ट
10: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इन समझौतों में डिजिटल पहचान डिजिटल भुगतान डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात सिंगापुर फ्रांस मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है आधार डिजीलॉकर कोविन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस दीक्षा उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है अमन यादव आकाशवाणी समाचार दिल्ली
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा एक रिपोर्ट
11: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है है 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
9: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
12: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
9: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है और फिर बोइंग गांव जाकर जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
12: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
9: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
9: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
9: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
6: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में

0: ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
1: India's engagement.
2: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
1: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में पहली जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Medium wave, kilohashik song up chung up sum, yang meters, yip ge chuk yap chitang, shuzur go. Yang I fem megahars gatang chick tang, shuzur chick and a she, akashwani, lady shun chick tang, yimichuzot, nistang pitcher. Gazeta, chuzot, nistang skarmang up chunga, tukpa, ladak silurik sanatatin. Inangas gola, sitting chapter is alkani, ilubo sanatat.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 years में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि VBG राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साह ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The government today approved the construction of a six-lane road tunnel for National Highway 148AE in Delhi, connecting Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj. Briefing media in the national capital today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has also approved the construction of the 117.7-kilometre Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh.
3: Today the cabinet approved two major decisions both related to highway infrastructure. The first addresses a long pending demand in Delhi for improved connectivity between the National Highway Corridor and Vasant Kunj. Several efforts had been made over the years and today those proposals have finally been approved. The project involves the construction of six-lane Dwarka Tunnel at an estimated cost of 6,970 crore rupees. The second decision is related to Uttar Pradesh. The cabinet has approved the construction of four-lane access-controlled highway between Kanpur and Kabrai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7,145 crore rupees. In addition, significant improvements have also been planned for the subsequent sections of the corridor.
1: Section ka bhi usme bahut sara improvement hai.
2: Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with the various administrations. The panel informed Mr. Shah that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. Chairperson of the Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election, P.P. Chaudhary, today stressed the need for holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies. Addressing a press conference in New Delhi, he said conducting elections together would strengthen governance, reduce disruptions caused by frequent polls and benefit the economy. India and Pakistan today exchanged lists of civil prisoners and fishermen in each other's custody through diplomatic channels in New Delhi and Islamabad. The External Affairs Ministry said in a statement that India has shared lists of 386 civil prisoners and 53 fishermen in its custody who are Pakistani or believed to be Pakistani. Pakistan has shared lists of 52 civil prisoners and 198 fishermen in its custody who are Indian or believed to be Indian. India has consistently called for early release and repatriation of civil prisoners, fishermen, along with their boats and missing Indian defence personnel from Pakistan's custody. The first batch of pilgrims for the Sri Amarnath Ji Yatra has reached the Bhagwati Nagar base camp in Jammu and is all set to begin the annual pilgrimage tomorrow. All necessary arrangements, including enhanced security and accommodation for pilgrims, have been put in place for the 57-day Yatra scheduled to take place through the Nunwan, Pahalgam and Baltal routes under tight security. Akashwani today unveiled its broadcasting house photo gallery Swar Prerna Vithika at Rang Bhavan Auditorium in Akashwani Bhavan, New Delhi. The photo gallery was inaugurated by Padma Vibhushan flautist Pandit Hari Prasad Chaurasia. The gallery features portraits of Bharat Ratna awardees including Vidushi M.S. Subbalakshmi, Ustad Bismillah Khan, Pandit Bhimsen Joshi, Pandit Ravi Shankar, Lata Mangeshkar and Dr. Bhupen Hazarika. During the event, a musical concert was organized in which a flute recital was performed by Pandit Rupak Kulkarni, Chief Executive Officer of Prasar Bharati Gaurav Dwivedi and Director General of Akashwani and DD News, Rajiv Kumar Jain, were also present at the event. In men's cricket, India will take on England in the first T20 International of the five-match series in Chesterler Street tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The Shreyas Iyer-led Indian side will look to bounce back from their shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. In FIFA World Cup, England will face Democratic Republic of Congo, Belgium will meet Senegal, and USA will clash with Bosnia and Herzegovina in round of 32 matches tonight. And with that, we end this news bulletin.
4: ngaje akashwani leni jenjektan pito chuto tuk tanskar mas chuchadu kasata gamyul pes skadlon digrim sanazat digrim pulkan thinlestan jenya digrim kodik zatkan sonamachuk

मीडियम वेव 284.9 मीटर यानी 1053 किलोहर्ट्स, FM 101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। शाम के 6:40 हो रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है फौज वायु के लिए कार्यक्रम।

जय हिंद फौजी भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मन पसंदीदा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में। फौजी भाई इस वक्त के कार्यक्रम में सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं क्रिश फिल्म से गीत, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीतकार नसीर फराज और संगीतकार राजेश रोशन।

लीजिए अब सुनिए एजेंट विनोद फिल्म से गीत, हंसिका और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में। गीत का अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत का प्रीतम।

अब सुनते हैं मीट ब्रोस अनजान, सलमान खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में, गीतकार कुमार और संगीतकार मीट ब्रोस।

अभी आप सुन रहे थे काइट फिल्म से गीत की की आवाज़ में। गीतकार थे नसीर फराज और संगीतकार राजेश रोशन। लीजिए अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए हलचल फिल्म से गीत। उदित नारायण और सुजाता की आवाज़ों में गीतकार समीर और संगीतकार विद्या सागर।

0: तौर पर मुरतब किया जाएगा। उन्होंने सही और बरवक्त जानकारी आवाम तक पहुंचाने के लिए मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। पहले मरहले की तकमील के बाद अब डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम तर तवज्जो मुर्दमशुमारी के दूसरे मरहले पर मरकूज हो गई है। दूसरे मरहले के तहत सितम्बर 2024 में पहाड़ी इलाकों में लोगों की आबादी का शुमार किया जाएगा, जबकि मैदानी इलाकों में ये काम अगले साल फरवरी के महीने में अंजाम दिया जाएगा। शबीरुज़्ज़मा, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर।
1: आज डॉक्टरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन समाज के तहत डॉक्टरों की बेलौस खिदमात, उनके हमदर्दाना जज्बे और कीमती जानों को बचाने में उनकी काविशों के लिए उनकी इज्जत अफजाई के एतराफ में मनाया जाता है। इस दिन की मुनासिबत से आज सिक्किम सोरा समेत कई दीगर तिब्बी इदारों में तकारीब का इनेकाद किया गया, जिनमें लोगों तक मैयारी तिब्बी खिदमात पहुंचाने में डॉक्टरों के रोल को उजागर किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर डॉक्टरों की बेमिसाल काम के लिए उन्हें सलाम पेश किया है। एलजी ने कहा है कि कौम को डॉक्टरों की अजीम खिदमात और उनके गैर मुतजलजल अज़्म पर फख्र है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस दिन के मौके पर बेलौस खिदमात अंजाम देने वाले तिब्बी अमले को शाबाशी और मुबारकबाद पेश की है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में उन्होंने डॉक्टरों के तईन नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने भी आज सभी डॉक्टरों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि वो तिब्बी शोबे के बुनियादी सुतून की हैसियत रखते हैं। पेशे इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर हम आज उन डॉक्टरों और तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, जो अपनी पेशावराना महारत, लगन और इंसानी हमदर्दी के जज्बे के साथ आवाम के सेहत की हिफाजत में मसरूफ अमल हैं। डॉक्टर हमारे मुआशरे का वो कीमती सरमाया हैं, जो हर मुश्किल घड़ी में इंसानियत की खिदमत के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार निभाते हैं। वबाओं, कुदरती आफात और दीगर हंगामी हालात के दौरान डॉक्टर लाखों इंसानों की जानें बचाने में अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लाकर लाखों कुंभ के लिए खुशी और मुसर्रत का पैगाम लाते हैं। डॉक्टरों के कौमी दिन के ताल्लुक से जब हमने डायरेक्टर सिकिम्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई के साथ बात की तो उन्होंने कहा,
2: डॉक्टर्स हमेशा पब्लिक के लिए अच्छा सोचते हैं। हमारा हिपोक्रेटिक ओथ में ये होता है कि डॉक्टर अपने आप को डेडिकेट करते हैं पब्लिक के लिए। सिकिम्स में 99% डॉक्टर्स डेडिकेटेड है, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं है। शाम तक, रात दिन 24 घंटे इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि ताकि उनके मरीज, उनके पास जो आता है उसको विदाउट डिफिकल्टी, विदाउट एनी प्रॉब्लम, एम्पैथेटिक कंपैशनेट केयर मिले।
1: इस बात में अगरचे कोई शक और शुबा नहीं कि हमारे कुछ डॉक्टर बाज़ औक़ात मरीजों की सेहत के बजाय अपने मफादात को तरजीह देकर इस अजीम पेशे की बदनामी का बायस बनते हैं, ताहम ये भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि हमारे अक्सर बेशतर डॉक्टर मरीजों के लिए बसा औक़ात अपनी खुद की सेहत को भी भूल जाते हैं। वादी में गर्मी की शिद्दत में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कश्मीर सूबे के अव्वल से 12वीं जमात के सभी सरकारी और सरकार से तस्लीमशुदा निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान किया है। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर की जानिब से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया कि स्कूल जुलाई की 6 से 19 तारीख तक गर्माई तातीलात के लिए बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक अदबी तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान मारूफ ब्रॉडकास्टर और आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल बशीर आरिफ के अफसानवी मजमुए म्याने वचिक कोतर की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा की सदारत में मुनक्कदा तकरीब पर पद्मश्री प्रोफेसर शफी शौक, डॉक्टर रफीक मसूदी, बशीर बड़गामी, शहजादी साइमन, रुखसाना जबीन, शफक सोपोरी और कल्चरल अकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम के अलावा काफी तादाद में अदब नवाज मौजूद थे। प्रदेश बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकारी सेक्टर की नौकरियों को आउटसोर्स करने के मंसूबे को हदफ़े तनकीद बनाया है। एक बयान में पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अनवर खान ने इस इकदाम को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए इसे नौजवानों के ख्वाबों के लिए सिमे कातिल करार दिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि यह महज एक पॉलिसी तनाजा नहीं है, बल्कि इंतजामिया और नौजवानों के दरमियान बुनियादी तौर पर एतमाद तोड़ने के मुतरादिफ है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में सुरमे सनाकड़े जवान डोगरे नाम का डोगरी गीत जारी किया। इस मौके पर कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। दरिया सना सत शर्मा और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने आज एक मीटिंग में पार्टी के प्रोग्राम और बीजेपी के कौमी सदर के आने वाले दौरे के ताल्लुक से इंतजाम का जायजा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला तनवीर सादिक ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुतादिद अवामी वफूद और कारकुनों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अवामी मसाइल और मुतालबात सुने। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों के मयारी हयात में बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। अनंतनाग पुलिस ने पिछले 6 महीनों के दौरान मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को तेज करते हुए एनडीपीएस के तहत 345 मामला दर्ज किए। 372 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया और 2000 किलोग्राम नशीली अद्वियात को तबाह कर दिया गया। विकसित भारत रोजगार जमानती और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी जीराम जी एक्ट 2025 आज से पूरे मुल्क में लागू हो गया है। इस एक्ट का इतलाक मुल्क के देही इलाकों पर होगा। ये एक्ट 20 साल पुराने एमजी नरेगा की जगह ले रहा है। देही तरक्की की वजारत ने इस एक्ट की मुअसर अमलावरी के लिए रवां माली साल के दौरान 9,56,92,00,00,000 रुपए की रकम दस्तियाब कराई है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:23 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
3: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं सुहेल भट्ट हाजिर। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 आज यकम जुलाई से नाफिज हो गया है और इसका बाजाबता इतलाक कल आंध्र प्रदेश से होगा। देही तरक्की की वजारत के मुताबिक ये एक्ट अहल देही घरानों को मौजूदा देही रोजगार के फ्रेमवर्क के तहत फराहम करदा 100 दिनों के मुकाबले में 125 दिनों तक उजरत के रोजगार की कानूनी जमानत फराहम करता है। वजारत ने कहा है की हमवार मुंतकली, बरवकत उजरत की अदायगी और नए फ्रेमवर्क के तहत कामों के बिला तातुल निफाज को यकीनी बनाने के रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 95,692.31 करोड़ रुपए की अबूरी रकम को पहले ही मुख्तस किया गया है। दी तरक्की की मरकजी वजारत का कहना है कि हुकूमत की तरजीह इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई अहल दही कारकुन एक दिन भी काम के बगैर न रहे और मरकज और रियासतों ने रोल आउट के लिए इंतजामी, माली और तकनीकी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए मिलकर काम किया है। हुकूमत ने कहा है कि मौजूदा EKYC से तस्दीक शुदा जॉब कार्ड उस वक्त तक दुरुस्त रहेंगे जब तक कि नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड्स जारी नहीं किए जाते। इसने मजीद कहा है कि ग्राम पंचायतें कुदरती वसाइल के इंतजाम, पानी के तहफ्फुज, ज़राअत और इससे मुंसलिक सरगर्मियों, देही बुनियादी ढांचे और खवातीन को बाइख्तियार बनाने जैसे शोबों पर तवज्जो मरकूज करते हुए स्कीम के निफाज में कलीदी किरदार अदा करती रहेंगी। वजारत के मुताबिक 29 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने एक्ट के लिए बजट के इंतजाम किए हैं जबकि 24 रियासतों ने अपने इस प्रोग्राम के तहत रियासती स्कीमों की निशानदेही की है। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट देही रोजगार का एक तारीखी कानून है। ये मनरेगा की जगह लेगा जो हर माली साल में जरई मजदूरों की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए चोटी की बुवाई, कटाई के मौसम में बेरोजगारी पर काबू पाने में मददगार साबित होगा। इस कानून में ये बात कही गई है कि अगर हुकूमत मुकर्रम मुद्दत के अंदर काम फराहम नहीं कर सकती है तो इससे अलाउंस अदा करना होगा। कानूनी उजरत की शरह रियासत के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। नजरसानी शुदा योमिया कम अज कम तकरीबन 300 रुपए से लेकर 450 रुपए की गई है। जम्मू कश्मीर, हिमालयी और शुमाली मशरकी रियासतों के लिए फंड शेयरिंग पैटर्न 90 और 10 के तनासुब से है और दीगर तमाम रियासतों यूटीज के लिए ये शरह 60 और 40 है। नए कानून का निफाज अपोजिशन जमातों और देही रोजगार के कारकुनों की तनकीद के दरमियान हुआ है जिन्होंने मौजूदा देही रोजगार की जमानत के फ्रेमवर्क में तब्दीलियों पर तश्वीश का इजहार किया है लेकिन मरकज के दलाइल मुदलल हैं और ये कि नया निजाम मांग पर मबनी रोजगार की नौयत रियासतों और पंचायतों के किरदार को मौसर कर सकता है और लागू करने के लिए मुनासिब माली वसाइल दस्तियाब होंगे। हुकूमत ने बरकरार रखा है कि नया फ्रेमवर्क देही रोजगार रोटी की हिफाजत को मजबूत करेगा, असासाजात की तकलीफ को बेहतर बनाएगा और रोजगार के मौके करने के लिए ज्यादा जामिया नुक्ते नजर फराहम होगा। इस मिशन में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाने, अहम देही तरक्की के प्रोग्रामों के साथ हम आहंगी और टेक्नोलॉजी से चलने वाली शफाफियत पर जोर दिया गया है। नए फ्रेमवर्क का मकसद शराकती मनसूबा बंदी और मौसर निजाम के लिए गाँव की मईशतों को मजबूत करना, पायदार मुआश पैदा करना और देही हिंदुस्तान में मयार जिंदगी को बेहतर बनाना है। जम्मू कश्मीर जैसे सरहदी इलाके में इस तरह के देही तरक्याती प्रोग्राम की अशद जरूरत रही है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर कारखानों की कमी से रोजगार के मौके बहुत कम पैदा होते हैं। देही तरक्की के हुसूल के लिए मरकजी सरकार की ये पहल दरदस्त नतीजे की हामिल हो सकती है क्योंकि इसके लिए पहले پہلے ہی رقومات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے، جیسا کہ منریگا میں نہیں دیکھنے میں آتا تھا، اور آج بھی منریگا کے تحت کیے گئے

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: ताशिंग मादों ठोपा उन्हें सलकनी इज़ अप्रैल लोगों नाम सनाजात।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया, जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: Dansan yaşanan taşın imadan topa ne sal kani jabri lurik sen azat. Aji Akashvani leni jüen cikten. Sani çitot gyat dans karma jipsi jana çadu. Kasata Akashvani deli ne skonla samacha sandiya news er nai niyans tingne urdina nastul sen azat.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
3: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
4: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
5: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
1: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
6: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
7: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight. The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. The projects include a 6,969 crore rupee tunnel project in Delhi aimed at easing congestion and a 7,145 crore rupee greenfield highway corridor in Uttar Pradesh. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE, connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnav said the Cabinet also approved the construction of the 117.7 kilometer long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor.
9: Today, the Cabinet approved 2 major decisions, both related to highway infrastructure. The first addresses a long-pending demand in Delhi for improved connectivity between the National Highway Corridor and Vasant Kunj. Several efforts had been made over the years, and today, those proposals have finally been approved. The project involves the construction of 6-lane Dwarka Tunnel at an estimated cost of 6,970 crore rupees. The second decision is related to Uttar Pradesh. The Cabinet has approved the construction of 4-lane access-controlled highway between Kanpur and Kabrai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7,145 crore rupees. In addition, significant improvements have also been planned for the subsequent sections of the corridor.
2: Section ka bhi usme bahut sara improvement hai.
8: The Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government has also notified revised wage rates under the Vikasit Bharat G. Ramji Act 2025 for all states and union territories. We have a report. Under this, no notified daily wage anywhere in the country will be below 300 rupees, increasing the national average notified wage from 298.8 rupees per day to 327.4 rupees per day. This reflects an enhancement of more than 10% in wages. To mark the national rollout of the Act, a national launch program will be held tomorrow at Tirupati district of Andhra Pradesh. Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan and Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu will attend the program. The national launch program will feature the formal launch of VBG Ramji, distribution of rural employment guarantee cards to beneficiaries and launch of the VBG Ramji software platform. Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
10: With the Act becoming operational, Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Mr. Chauhan said the Viksit Bharat Ji Ramji Act is a transformative initiative that ushers in a new era of dignity, self-respect and livelihood security for millions of rural workers. Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with various administrations. The panel informed the Home Minister that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. Chairperson of the Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election, P.P. Chaudhary, today stressed the need for holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Chaudhary said elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies were held simultaneously during the initial decades after independence, but the electoral cycle was disrupted following the premature dissolution of legislatures and the imposition of president's rule in several states. Highlighting the benefits of One Nation, One Election, Mr. Chaudhary said it would reduce the repeated enforcement of the Model Code of Conduct, strengthen governance and benefit the economy. The Supreme Court today laid down guidelines on how courts should determine the annual income of deceased victims in motor accidents or injured claimants on the basis of income tax returns. In a significant verdict aimed at bringing uniformity to motor accident compensation, the top court held for salaried individuals, only the income tax return, ITR, of the previous year will be sufficient for showcasing the annual income. In case of self-employed persons, it held that the average income disclosed in ITRs for up to the previous 3 years should ordinarily serve as the reference point. The Apex Court held that there cannot be a rigid formula for computing annual income under the Motor Vehicles Act, but drew a clear distinction between salaried employees and self-employed persons for the purpose of assessing compensation based on their ITRs. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, arrived in New Delhi this evening on a three-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State, Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Our correspondent reports that Japan is the only country with which India has a dedicated institutional mechanism for the development of the Northeast, the India-Japan Act East Forum.
11: India and Japan are partnering on connectivity and development in Northeast India, including projects in infrastructure, urban renewal, energy, agriculture, tourism and skills. Northeast region fits into Japan's vision of a free and open Indo-Pacific as a bridge connecting South Asia with Southeast Asia. Several incoming and outgoing high-level visits between Northeast region and Japan have taken place since 2025, including State Minister for Foreign Affairs of Japan, Iwao Hori's visit in February this year, when he had met the chief ministers of Meghalaya and Assam. The chief minister of Meghalaya visited Japan in April this year, and an agreement was signed for the skill training and employment of 5,000 youth from the state in Japan over 5 years. Assam chief minister visited Japan in January last year, and an MOU was signed between Assam and ASEAN 1 for the training of 20,000 youth over a period of 5 years. Japan and the northeastern states have acknowledged similarities in culture and cuisine, as well as the potential for cultural exchange and cooperation. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
12: India and Pakistan today exchanged lists of civil prisoners and fishermen in each other's custody through diplomatic channels in New Delhi and Islamabad. The External Affairs Ministry said in a statement that India has shared lists of 386 civil prisoners and 53 fishermen in its custody who are Pakistani or believed to be Pakistani. Pakistan has shared lists of 52 civil prisoners and 198 fishermen in its custody who are Indian or believed to be.

0: London. India has strongly condemned the demolition of the historic 125-year-old sacred Gurdwara Sri Guru Singh Sabha Sahib in Farrukhabad, Pakistan, calling it highly deplorable and a targeted act of vandalism. In response to media queries regarding the reported demolition, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the systemic targeting of religious minorities and their places of worship in Pakistan continues unabated. India has called upon Pakistan to expeditiously investigate the matter and bring the perpetrators of the act to justice. The government today issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. Sources said the Ministry of Information and Technology directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. The ministry also directed Meta to not roll out the usernames feature until consultation on the matter is over. Sources said there are concerns about the feature may increase incidents of online frauds, phishing, digital arrest scams and impersonation attacks. Concerns have also been raised that the feature may facilitate impersonation and identity spoofing. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju today visited the flood-hit Dhemaji district in Assam to assess the damage and review relief measures. The ministers inspected the worst-affected Arunachapuri area as part of their tour of flood-affected regions in Assam and Arunachal Pradesh. Addressing the media, Mr. Chauhan said the floods had caused extensive damage with rivers changing course, destroying homes, crops and power infrastructure. He assured full support from the centre and said a long-term strategy would be prepared to tackle the recurring flood problem in the region. Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu today said a ground assessment of flood-affected areas is underway and a detailed report will be submitted to the centre after it is completed. It comes as the Chief Minister, along with Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju, conducted an aerial survey of the flood-hit districts. Maharashtra's capital Mumbai has been witnessing heavy rainfall since yesterday, with intense showers continuing across the city and the Mumbai metropolitan region. More from our correspondent.
1: The heavy downpour led to waterlogging in several low-lying areas of Mumbai, including Andheri and Dadar, disturbing traffic and daily life. Heavy rain also reduced visibility across several parts, affecting vehicular movement. The India Meteorological Department has warned of thunderstorm accompanied by lightning, gusty winds of up to 60 km per hour and heavy rainfall over Mumbai, Thane and Palghar today. The IMD has issued red alert for Palghar district for tomorrow. In the view of the warning, the Palghar District Administration has declared a holiday for all schools and colleges tomorrow. Shailaja Tirule, AIR, Mumbai.
0: Akashwani today unveiled its broadcasting house photo gallery, Swar Prerna Vithika, at Rang Bhavan Auditorium in Akashwani Bhavan, New Delhi. The photo gallery was inaugurated by Padma Vibhushan flautist Pandit Hari Prasad Chaurasia. Chief Executive Officer of Prasar Bharati Gaurav Dwivedi and Director General of Akashwani and DD News Rajiv Kumar Jain were also present at the event. Addressing the gathering, Mr. Dwivedi said, Akashwani has played a pivotal role in preserving and promoting India's rich musical heritage. Now to sports. In men's cricket, India will take on England in the first T20 International of the five-match series in Chesterlow Street tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The Shreyas Iyer-led Indian side will look to bounce back from their shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. In football, England will clash with Democratic Republic of Congo, DR Congo, in a round of 32 match of the FIFA World Cup at Atlanta in US tonight. In other round of 32 matches, Belgium will take on Senegal at Seattle, while hosts United States will face Bosnia-Herzegovina in California. So far, Mexico, France and Norway have qualified for the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves two major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat Ji Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a three-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on host England in first T20 International, a five-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। हुकूमत ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की मालियत के शहराओं के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। विकसित भारत जी रामजी एक्ट आज से मुल्क भर में नाफिज हो गया है। मरकज ने इस स्कीम के तहत उजरत की नजरे सानी शुदा शरहों को नोटिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के दावों में यकसानियत लाने की गरज से गाड़ियों के हादसे के मुतासरीन की आमदनी का तायुन करने के सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए हैं। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के तीन रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वो कल 16वें भारत जापान सालाना समिट में हिस्सा लेंगी। मर्दों के क्रिकेट में आज रात 5 मैचों की सीरीज में भारत और मेजबान इंग्लैंड पहले T20 बैन अक्वामी मैच में आमने सामने होंगे। और फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के अटलांटा में इंग्लैंड और DR कॉन्गो प्री क्वार्टर फाइनल में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज शहराओं के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिस पर मुश्तरका तौर पर 14,114.81 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्टों में 6,969 करोड़ रुपए का दिल्ली में सुरंग से मुताल्लिक एक प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद बहुत ज्यादा ट्रैफिक को कम करना है। दूसरा प्रोजेक्ट 7,145 करोड़ रुपए के ग्रीन फील्ड शहरा से मुताल्लिक है। ये शहरा उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। मरकजी काबीना के फैसलों के बारे में कौमी राजधानी में मीडिया से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इन प्रोजेक्टों का मकसद PM गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाना, सफर के वक्त को कम करना और इकतसादी सरगर्मियों को फरोग देना है। काबीना ने दिल्ली में कौमी शहरा 148 AE पर 6 लेन वाली 8.1 किलोमीटर तवील सुरंग की तामीर को मंजूरी दी है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। काबीना ने उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा नंबर 34 पर 117.7 किलोमीटर कानपुर कबरई सेक्शन की तामीर को भी मंजूरी दी है, जो 4 लेन वाली एक्सेस कंट्रोल राहदारी होगी, जिसका ढांचा इस तरह वजा किया जाएगा कि इसे आसानी से 6 लेन वाला बनाया जा सके।
3: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
2: विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 के तहत बढ़ी हुई उजरतों का इतलाक आज से मुल्क भर में हो गया है। देही तरक्यात की वजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहें तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बढ़ा दी गई हैं। वजारत ने कहा है कि पहली मरतबा 300 रुपये यौमिया की उजरत की एक अबूरी बुनियादी शरह मुतारिफ कराई गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस प्रोग्राम के तहत कोई भी नोटिफाइड उजरत इस सतह से कम ना हो। विकसित भारत जी राम जी के तहत कौमी औसत उजरत MG नरेगा के तहत 298.80 रुपए यौमिया से बढ़कर 327.40 रुपए यौमिया हो गई है, जो कि 10% का औसत इजाफा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रहनुमा खतूत जारी किए हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की बुनियाद पर गाड़ी के हादसे में हलाक होने वाले मुतासरीन या दावा पेश करने वाले जख्मियों की सालाना आमदनी का तायुन अदालतें किस तरह करें। गाड़ियों के हादसे की सूरत में मुआवजों में यकसानियत लाने की गरज से एक अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तनख्वाह पाने वाले अफराद के लिए पिछले बरस की इनकम टैक्स रिटर्न ही सालाना इनकम का तायुन करने के लिए काफ़ी होगी। अपना रोजगार आप चलाने वाले अफराद के सिलसिले में अदालत ने कहा है कि पिछले 3 बरस में दाखिल की गई ITR में बताई गई औसत आमदनी को ही आमतौर पर रेफरेंस पॉइंट बनाया

0: जाएगा। जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि मोटर गाड़ियों के एक्ट के तहत सालाना आमदनी का हिसाब किताब लगाने के लिए कोई एक तयशुदा फार्मूला नहीं हो सकता, इसलिए उसने तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन और अपना रोजगार खुद चलाने वाले अफराद के दरमियान वाजह तफरीक कायम की है ताकि उनकी अपनी अपनी ITR की बुनियाद पर मुआवजे का तायुन किया जा सके। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आबादी से मुतालिक तब्दीलियों के सिलसिले में आला सतह की कमेटी से कहा है कि वो जल्द अज जल्द अपनी सिफारिशात पेश करे। नई दिल्ली में कमेटी के साथ एक मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने यह हिदायत दी। कमेटी ने वजीर दाखला को मुत्तला किया कि वो मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों का दौरा करेगी ताकि आबादी से मुतालिक तब्दीलियों के बारे में बर मौका इत्तला हासिल कर सके और मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सके। कमेटी ने जनाब शाह को बताया कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से मुतालिका मालूमात हासिल करने की गरज से एक तफसीली सवालनामा पहले ही तैयार किया जा चुका है जिससे उनके ये दौरे ज्यादा बामानी और ज्यादा तामुल पर मबनी हो सकेंगे। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरपर्सन PP चौधरी ने लोकसभा और रियासती कानून साज असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ मुनक्किद करने की जरूरत पर जोर दिया। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात का एक साथ इनेकाद करने से हुक्मरानी का निज़ाम मुस्तहकम होगा, बार बार होने वाले चुनाव से खलल अंदाजी में कमी आएगी और ये मुल्क की मईशत के लिए फायदेमंद रहेगा। जनाब चौधरी ने कहा कि इंतखाबात का एक इनेकाद कराने का ख्याल नहीं है और इंतखाबी कमीशन, लॉ कमीशन और माहिरीन पर मुश्तमिल दीगर इदारे बरसों से इसकी तजवीज पेश करते रहे हैं। एक मुल्क एक इंतखाब के फवाइद बयान करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि इससे मिसाली जाब्ता अखलाक के बार बार निफाज में कमी आएगी।
1: राष्ट्र प्रथम की नीति सोच करके आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है कि लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ हों। ये सोच जो है बहुत लंबे समय से चल रही, लेकिन उसको बिल के रूप में लाने का काम पहली बार हुआ।
0: मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने डेंगू से मुतालिक तैयारियों के बारे में दिल्ली सरकार के साथ एक जायजा मीटिंग के दौरान अवामी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि TB मुक्त भारत अभियान में तेजी आ सके। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि इस मुहिम से मुतालिक तमाम इत्तलात और मालूमात सादा और आसानी से समझ में आने वाली जबान में होनी चाहिए ताकि अवाम तक वसी तर रसाई को यकीनी बनाया जा सके। भारतीय बहरिया के बहरी जहाजों INS तरकश और INS इक्षक ने सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया पर लंगर अंदाज होने का अपना दौरानिया मुकम्मल किया। वजारत दिफा ने आज बताया कि इन बहरी जहाजों का यह दौरा बहर हिंद खित्ते में दोस्ताना बहरी मुल्कों के साथ बहरी तआवुन को मुस्तहकम करने के भारतीय बहरिया के अज़्म को दोहराता है। यह दौरा विजन महासागर से भी मुताबिकत रखता है। इस दौरान सेशल्स के कौमी दिन और गोल्डन जुबली तकरीबात के तहत मुख्तलिफ पेशे वराना इस्तकबालिया और कम्युनिटी की शिरकत पर मबनी सरगर्मियों को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। अपने दौरे के दौरान INS तरकश के बहरी बैंड और मार्चिंग दस्ते ने 28 जून को मुनक्किद सेशल्स के कौमी दिन की परेड में हिस्सा लिया, जो भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी और दीरीना बहरी साझेदारी की अक्कासी करता है। ये आकाशवाणी है। जापान की वजीर आजम सनाई ताकाइची अपने 3 रोजा भारत दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वजीर आजम ताकाइची का खैर मकदम किया। जापान की वजीर आजम सनाई ताकाइची का यह भारत का पहला सरकारी दौरा है। इस दौरान वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कल 16वें भारत जापान सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। ये चोटी कॉन्फ्रेंस फरीकैन को दो तरफा तआवुन के सभी पहलुओं का जायजा लेने, उन्हें मुस्तहकम करने और बाहमी मफादात के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका फराहम करेगी। वजीर आजम मोदी और जापान की वजीर आजम के दरमियान बातचीत के बाद कई मुफाहमत नामों के तबादले की उम्मीद है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारत और जापान बुनियादी ढांचे, शहरी जदीदकारी, तवानाई, ज़राअत, सियाहत और हुनरमंदी प्रोजेक्टों समेत शुमाल मशरकी भारत में कनेक्टिविटी और तरक्की में शराकत दार हैं। शुमाल मशरकी खिता खुले और आज़ाद भारत बहरुल काहिल के जापान के नज़रिए से मुताबिकत रखता है और जुनूबी एशिया को जुनूब मशरकी एशिया से जोड़ने में पुल का काम करता है। शुमाल मशरकी खित्ते और जापान के दरमियान साल 2025 तक अब तक कई आला सतह के दौरे हुए हैं, जिनमें जापान के खारजी उमूर के वजीर ममलकत इवाओ होरी का इस साल फरवरी का भारत दौरा शामिल है। इस दौरान उन्होंने मेघालय और आसाम के वज़ीर आला से मुलाकात की थी। इसी तरह आसाम के वज़ीर आला ने भी गुज़िश्ता साल जनवरी के महीने में जापान का दौरा किया और आसाम और आसियान के दरमियान अगले 5 साल के दौरान 20,000 नौजवानों को तरबियत देने से मुतालिक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: भारत ने पाकिस्तान के फारूकाबाद में तारीखी 125 साल पुराने मुकद्दस गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को मुनहदिम किए जाने की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि यह इंतहाई अफसोसनाक और तहजीबी विरासत को ख़त्म करने की एक तयशुदा कार्रवाई है। मुबैना इनदामी कार्रवाई के मुतालिक मीडिया के सवालात के जवाब में वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इस इनहदामी कार्रवाई पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया और मकामी हुक्काम या इवैक्यूट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की जानिब से कोई बामानी कार्रवाई न किए जाने की रिपोर्टों पर भी तशवीश जाहिर की। भारत ने पाकिस्तान से जोर देकर कहा है कि वो इस मामले की तेजी से तहकीकात करे और कसूरवारों को कैफर किरदार तक पहुंचाए। जनाब जायसवाल ने जोर देकर कहा कि गुरुद्वारा साहिब के मुनहदिम किए गए हिस्सों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और उनकी तामीर नौ की जाए। भारत ने इस्लामाबाद से जोर देकर यह भी कहा है कि वह अकलियती फिरकों और उनकी इबादत गाहों के तहफ़ सलामती और ठीक ठाक रहने को यकीनी बनाए जाने से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और पाकिस्तान में फिरके वारियत पर मबनी तशद्दुद और मजहबी अदम रवादारी के मौजूदा माहौल को फैसला कुन इख्तिताम तक पहुंचाए। भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में सिफारती चैनलों के जरिए एक दूसरे के मुल्कों में जेर हिरासत शहरी कैदियों और माही गीरों की फहरिस्तें एक दूसरे को पेश की। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 ऐसे शहरी कैदियों और 53 माही गीरों की फहरिस्त उन्हें सौंपी जो पाकिस्तानी हैं या जिनके मुतालिक ख्याल है कि वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 सिविल कैदियों और 198 माही गीरों की फहरिस्त सुपुर्द की जो भारतीय हैं या जिनके मुतालिक ख्याल है कि वो भारतीय हैं। भारत पाकिस्तान के जेर हिरासत शहरी कैदियों माहीगीरों और उनकी कश्तियों और लापता भारतीय दिफाई अहलकारों की जल्द अज जल्द रिहाई के लिए लगातार जोर देता रहा है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों का पहला जत्था जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप में पहुंच चुका है और कल से सालाना यात्रा शुरू होने की तमाम तैयारियां हो गई हैं। तमाम जरूरी तैयारियां जिनमें बढ़ी हुई सिक्योरिटी और यात्रियों की रिहाइश के इंतजाम शामिल हैं पूरी हो गई हैं। ये 57 रोजा यात्रा ननवान पहलगाम और बालतल के रास्ते सख्त सिक्योरिटी में जारी रहेगी। आकाशवाणी ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में वाकई रंग भवन ऑडिटोरियम में अपनी नशरियाती हाउस की फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का इफ्तिताह किया। इस फोटो गैलरी का इफ्तिताह पद्म विभूषण बांसुरी नवाज पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने किया। इस तकरीब के दौरान एक मौसीकी रेस कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया जिसमें पंडित रूपक कुलकर्णी ने बांसुरी की धुनों से मन मोह लिया। तकरीब के दौरान प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी और दूरदर्शन न्यूज के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद अफराद से खिताब करते हुए जनाब द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की फरावा मौसीकी की विरासत को महफूज रखने और फरोग देने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के मामैन T20 5 बैन अलावामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में होगा। ये मुकाबला भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। फुटबॉल में फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में आज रात एटलांटा में इंग्लैंड का मुकाबला जमहूरिया रिपब्लिक कांगो से होगा। और आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। حکومت نے دلی اور اتر پردیش میں 14,000 کروڑ روپے کی مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. وکست بھارت جی رام جی ایکٹ آج سے ملک بھر میں نافذ ہو گیا ہے. مرکز نے اس اسکیم کے تحت اجرت کی نظر ثانی شدہ شرحوں کو نوٹیفائی کیا ہے. سپریم کورٹ نے معاوضے کے دعوے

0: Dans sa yéjala kundzaz dholma dang topa on sal kane junglurik sanazadz.
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कसता छेवा नुरबुतं रिंचे नमजलगुन सलकनी इजुंगलुगुन सनाजात।

दासा इजा छ ओनर पु तंग रिंग चेन नम यल गुने सल कने इ जंग लुरिक सनजात गजे आकाशवाणी लेने इ जुन जेक तान छन छु छु अशु छादुक इन ना तंग पु गजे दिने डिग मिस पा बतन डिग्रम तंग पे फिया तोरिंग अतो छु छु दुन नास का मा इ शु तासु मेका यान जालिन ते ते सो पा गजा गोंस पा सलाजात जुलेई जय हिंद।